नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जिस कथा विचारी, गौरमुख हाँ मैं।

अरदास भाई, अमरदास गुरु, अमरदास गुरु, अरदास भाई, रामदास गुरु, रामदास गुरु, रामदास गुरु, सच्ची साई। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। अरदास श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही तस्वीर प्रथम।